धरती बने चाहे आसमान, हम सदा तेरे साथ रहेंगे प्यार की नगरी में सदा। ओम श्री साई राम। टू दैट अल्टीमेट कंपेनियन हु इज लाइक एन ऑयस्टर टू अ पर्ल, शैडो टू अ बॉडी, क्लाउड टू द रेन एंड फ्रेग्रेंस टू अ फ्लावर, वी द यूथ ऑफ कर्नाटका have assembled here today to reiterate our everlasting companionship in the form of this humble musical offering titled Hum Tere Hai Sai. Dear Lord, neither the sun nor the rain could lay an obstacle in our path to reach here. To that Gananayaka, that Vigna Vinashaka, we offer our first rendition for this evening, Sharanu Siddhi Vinayaka.

0: है पहले मुझे वापस करो।
1: नहीं ये मेरा है, मैं नहीं दूंगा।
2: अरे अरे भाई ये क्या हो रहा है?
0: देखिए दादा जान, करीम भाई मेरा पेन नहीं दे रहा है।
2: क्यों भाई करीम मियाँ, आप रहीम मियाँ का पेन वापस क्यों नहीं दे रहे हैं?
1: ये पेन मेरा है दादा जान।
0: ये झूठ बोले हैं दादा जान।
2: अरे तौबा तौबा, आप झूठ बोल रहे हैं? आप एक सच्चे मुसलमान हैं, और सच्चा मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता। मालूम है इस्लाम में झूठ बोलना बहुत बड़ा गुनाह है।
1: जी
2: चलिए रहीम मियाँ का पेन वापस कीजिए।
1: ये लो।
2: शाबाश, आइए यहाँ मेरे पास बैठिए। आज हम आप लोगों को इस्लाम की कुछ बुनियादी बातों के बारे में बताते हैं, ताकि आप लोग कभी भी कोई भी गलती न करें।
0: हाँ हाँ दादा जान जरूर बताइए।
2: देखिए बेटा, इस्लाम मजहब के 5 खास रुकन हैं। इनकी मजबूती ही इस्लाम को मजबूत बनाती है।
0: बाप क्या कहे दादा जान?
2: पहला है तौहीद, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह। इसके माने है कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके रसूल हैं। इस पर पुख्ता यकीन रखना हर मुसलमान का फर्ज है।
1: दूसरा क्या है दादा जान?
2: दूसरा रुकन है नमाज। इस्लाम की पुख्तगी और मजबूती नमाज से ही होती है।
3: अस्सलामुअलैकुम अब्बू जान।
2: वालेकुम अस्सलाम।
1: अस्सलामुअलैकुम अब्बू जान।
3: जीते रहिए जीते रहिए। भाई यहाँ क्या हो रहा है?
2: आपके बच्चों को इस्लाम की बुनियादी बातें बता रहा हूँ।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। भाई आप लोगों ने कुछ सीखा?
1: जी अब्बू कोशिश कर रहे हैं।
3: बहुत खूब भाई बहुत खूब।
0: हाँ दादा जान, इस्लाम का तीसरा रुकन क्या है?
2: तीसरा रुकन है रोजा, यानी रमजान के महीने में 30 दिन रोजे रखना।
1: और चौथा दादा जान?
2: चौथा रुकन है ज़कात।
0: ज़कात का क्या मतलब?
3: ज़कात का मतलब ये होता है बेटा कि हर मुसलमान अपनी आमदनी का एक हिस्सा गरीबों के बीच बांट दे, जिससे अमीर और गरीब की खाई कम हो जाए।
2: और इस्लाम का 5वां और अहम रुकन है हज।
1: हज में क्या होता है दादा जान?
2: बेटे हज के दौरान सारी दुनिया के मुसलमान मक्के में इकट्ठा होकर काबे शरीफ का तवाफ करते हैं, और अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करके एक सच्चे मुसलमान बनने की दुआ करते हैं।
0: हम लोग हज करने कब चलेंगे?
3: हम लोग इंशाअल्लाह इसी साल हज करने चलेंगे।
0: अरे वाह, तब तो हम लोग भी हाजी हो जाएंगे।
1: अच्छा दादा जान, कुरान शरीफ में क्या क्या लिखा हुआ है?
2: भाई कुरान शरीफ के बारे में आप लोगों को आपकी दादी जान बताएंगी। मैं तो इस वक्त थक गया हूँ, थोड़ा आराम करूँगा।
3: चलिए हम आप लोगों को अम्मी जान के पास ले चलते हैं।
1: हाँ हाँ चलिए।
4: Having understood the 5 basic tenets of Islam, the children go to their grandmother. Dadi Jaan patiently explains to them the teachings of love and brotherhood in the Holy Quran.

0: الله أكبر
1: الله أكبر.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: السلام عليكم ورحمة الله.
2: ابو اب گھر چلیں.
3: ایک منٹ بیٹا ابھی چلتے ہیں.
4: बाबू भैया अल्लाह के नाम से भैया अल्लाह मुताज के भैया.
3: बेटा एक मिनट रुक जाइए, फकीर को पैसा दे दें.
4: अल्लाह भला करे, अल्लाह बच्चे खुश
2: रहे. दादा जान, क्या इस्लाम में गरीबों की मदद करना भी एक फर्ज है?
5: हाँ बेटा बिल्कुल है. गरीबों और दीन दुखियों की मदद करना इस्लाम में बड़े सवाब का काम माना गया है. इसीलिए हर साहिब हैसियत मुसलमान पर ज़कात देना फर्ज है.
3: समझ गए बेटा?
2: हाँ.
3: अब चले?
2: हाँ चलिए.
6: द मंथ ऑफ रमजान इज कंसिडर्ड होली बाय मुस्लिम्स. इट वॉज एट दिस टाइम ऑफ द ईयर इन द 7th सेंचुरी दैट प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिक्लेयर्ड द टीचिंग्स ऑफ अल्लाह टू मैनकाइंड. द होली कुरान हैड ऑल्सो बीन रिटन इन दिस मंथ. To express their gratitude to Allah, Muslims all over the world remained without food or water from sunrise to sunset for 30 days.
7: Mubarak ho, Mubarak ho. Ramzan ka chand nikal aaya.
3: Abbu, Mubarak ho.
8: Mubarak ho. Aapko bhi Mubarak ho. Chalo bhai, inshallah kal se roze shuru.
9: मैं भी रोजे रखूंगा दादा जान.
8: हाँ हाँ बेटा बिल्कुल रखिए.
9: लेकिन तुम्हारी तो अभी रोजे कुशाही नहीं हुई.
8: तो क्या हुआ रहीम मियाँ, आप रोजा रखिए, रोजे कुशाही तो अपने आप हो जाएगी.

0: उठो बेटा, रहीम करीम।
1: अरे बेटा उठ जाओ जल्दी से, सरी का वक्त हो गया है।
0: उठो बेटा, वक्त बहुत तंग है, उठ जाओ।
2: उठ तो गए हैं अम्मी।
0: हाँ शाबाश,
3: वक्त हो गया।
2: अम्मी जान, सरी खाने के बाद दिन भर कुछ भी खाने पीने को नहीं मिलेगा?
0: नहीं बेटा, रोजे में पूरे दिन कुछ भी नहीं खाते पीते, शाम को अफ्तार के वक्त ही रोजा खोलकर खाया पिया जाता है।
2: रोजे क्यों रखे जाते हैं दादी जान?
4: बेटा, इसी महीने में हमारे पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुदा का पैगाम दुनिया के सामने पेश किया। इसी महीने में कुरान पाक नाजिल हुआ, इसीलिए अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए पूरी दुनिया के मुसलमान साल में एक महीने रोजे रखते हैं और अपने रब की खुशनुदी हासिल करते हैं।
5: और बेटे, रोजा रखने से इंसान की सेहत भी ठीक हो जाती है, दिल और दिमाग से बुरे ख्याल दूर हो जाते हैं और रूह साफ और पाक हो जाती है।
6: हजरत, सहरी का वक्त खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं।
0: बेटा जल्दी करिए, देखिए सहरी का वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी करिए बेटा।
7: बेटा जल्दी करिए,
0: 2 मिनट बचे हैं। पानी पीजिए जल्दी से, पानी पीजिए जल्दी से, फटाफट।
5: हाँ भाई, आप लोगों ने सहरी कर ली
7: जी?
5: चलिए अब हम लोग रोजे की नियत करते हैं।
0: जी।
5: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
8: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
5: बिस्सौमिगदिन
8: नवायतो
5: लिल्लाह ताला,
8: लिल्लाह ताला,
5: मिन शहर रमजान,
8: मिन शहर रमजान।
5: अब हम लोगों की रोजे की नियत हो गई, अब हम लोग चलते हैं फजर की नमाज पढ़ने।
7: जी चलिए।
9: द न्यू मून इज साइटेड, द फेस्टिवल ऑफ ईद signifies the end of the month of prayers and fasting. Muslims all over the world greet each other with love and joy. It is time for feasting and celebration.
2: Mubarak ho, Mubarak ho, Eid ka chand ho gaya, Eid ka chand ho gaya.
1: Mubarak ho, Mubarak ho.
0: अम्मी जान, आपको बहुत
1: बहुत मुबारक हो।
7: अम्मी जान, चांद मुबारक हो।
0: मुबारक हो बेटा।
7: अबू जान, आपको भी मुबारक हो।
6: मुबारक हो, मुबारक हो भाई।
9: अबू जान और फादर कीप्स हिज वर्ड. The entire family travels to the holy city of Mecca in Saudi Arabia for Hajj. Islam proclaims that every pious Muslim who has the means to do so must make a pilgrimage to the holy city of Mecca at least once in his lifetime.
10: Islam ka panchwa khas rukn hai Hajj. Har sahib-e haisiyat musalman par Hajj farz hai. हज के लिए पूरी दुनिया से मुसलमान मक्का में जमा होते हैं। इस साल रहीम और करीम के वालिद, वालिदा, दादा जान और दादी जान भी हज करने मक्के मुअज्जमा तशरीफ लाए हैं। हज के दौरान सफेद कपड़े बगैर सिले हुए पहने जाते हैं, जिन्हें एहराम कहते हैं, जो हर हाजी को पहनना लाजमी है, चाहे वो अमीर हो या गरीब, गोरा हो या काला, छोटा हो या बड़ा। इस लिबास में सब एक से दिखते हैं। ऊंच नीच की सारी दीवारें यहाँ खत्म हो जाती हैं। हज के दौरान काबा शरीफ का तवाफ किया जाता है।
11: लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
12: लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक,
11: इन्नल हम्द।
10: मुकाम इब्राहिम में 2 रकात नमाज अदा की जाती है।
11: ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक,
12: लब्बैक अल्लाहुम्मा।
10: जमजम का पानी पिया जाता है।
11: شريك لك لبيك
12: لبيك لا شريك لك لبيك
11: إن الحمد والنعمة
12: والنعمة
11: لك
10: صفا اور مروا کی پہاڑیوں کی سعی کی جاتی ہے منا کے میدان جاتے ہیں عرفات کی پہاڑی پر دعا مانگتے ہیں اور پھر منا واپس آ کر शैतान को कंकड़ी मारते हैं।
11: इन्नल हम्द
12: वन्निअमत
11: लकवल मुल्क ला शरीक लक।
10: फिर कुर्बानी करके सर मुंडवाते हैं।

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरयो ना एक काजा भजियो नारग पत राजा। रहाओ बन खंड जाए जोग तपकीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जमके पटाए लिखाया। भगत नार दीर न आई काश कूश तंदीना। राग राग नी डिब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परे काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जै जानी। कर दूजा दोए दोए लोचन पेखा।

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवै अकेला। कथनी कह परम ना जाई, सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुखिया बुझाई ता कह हृदय रहा समाई। गुर किंचित कृपा कीनी सब तन मन दे हर लीनी, कह कबीर रंग राता मिलियो जग जीवन दाता। जाके निगम दूध के ठाटा, समुंद बिलोवन कौ माटा, ताकि हो बिलोवन हारी क्यों मेटै गोशास तुहारी। चेरी तू राम ना करस पतारा, जग जीवन प्राण आधारा रहाओ। तेरे गलह तौक पग बेरी, तू घर घर रमैया फेरी, तू अजो ना चेत सचेरी। तू जम्बपरी है हेरी, प्रभ करन कराम नहारी, क्या चेरी हाथ बिचारी, सोई सोई जागी जितलाई ततलागी। चेरी तै सुमत कहां ते पाई, जाते भ्रम की लीक मिटाई, सो रस कबीर जानिया मेरो गुरप्रसाद मन मानिया। जह बाज ना जिया जाई, जो मिले ता कालिया गाई, सद जीवन भलो कहां ही मुए बिन जीवन नाही। अब क्या कथिया ज्ञान बिचारा, निज निरखत गत व्यवहारा रहाओ। कस कुंकुम चंदन गारिया, बिन नैनो जगत निहारिया। पूत पिता एक जाया, बिन ठाहर नगर बसाया, जाचक जनदाता पाया, सो दिया न जाई खाया। छोड़िया जाए न मुका, और न पहजाना चूका, जो जीवन मरना जाने सो पंच सैल सुख माने। कबीर है सो तन पाया, हर पेट ते आप मिटाया। क्या पढ़िए क्या गुनिए, क्या वेद पुराना सुनिए, पढ़े सुने क्या होई, जो सह जन्म लियो सोई। हर का नाम ना जप सगवारा, क्या सोचे बारंबारा रहाओ। अंधेरे दीपक चाहिए, एक बस्ता गोचर लहिए, बस्ता गोचर पाई कट दीप करे आसमाई। कह

हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोभ सपानी काया मांजस कौन गुना जौ कट पीतर है मलना रहाओ लौकी अड़सर तीर्थ नाई कौरा पंतऊ ना जाई कह कबीर बिचारी पवसा गिरतार मुरारी सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु परपंच कर पर तन लियावै सुधारा बयान लुटावै मन मेरे कूले कपट ना कीजै अंत नबेरा तेरे जी पहली जय रहाओ छिन छिन तन छीजै जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानियो ना पावै कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपै सवेरा संत हो मन पवने सुख बनया कि जोग प्राप्त गनया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंद लिए दरवाजे बाजी आले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै हाउ मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ दोए शेर मांगो चूना पाओ की ओ संग लूना अध शेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जवाले खाट मांगो

कह कबीर मन मान्या, मन मान्या तो हर जान्या। राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जब देखा तब गावा, तो जन धीरज पावा, नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ। जह चिल मिलकार दिसंता, तै अनहद शब्द बजंता, ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी। रतन कमल कोठरी चमकार बीजल तही, नेरै नाही दूर निजात मैं रया भरपूर। जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा, गुर प्रसादी जानिया जन नामा सहे समानिया। कर चौथा सोरठ पाड़ पड़ोसन पूछले नामा, का पैशान शवाई हो, तो पै दुगनी मजूरी दहाओ, मोको बेडी दहो बताई हो। रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई, हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ। बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जो को शान शवावे हो, लोग को टंब सबोते तोरे, तो वापन बेडी आवे हो। ऐसो बेडी बर्न ना साको, सब यंत्र सब ठाई हो। गूंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो। बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांध तू था प्यो हो, नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो। सोरठ कर तीजा अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाजै।

तुम शरणागत राजा रामचंद, कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ न जनई, लोग गठावै पन ही रहाओ। आर नहीं जे तो पो, नहीं रामबी ठाओ रो पो, लो गंठ गंठ खरा बिगूचा, होमर गंठे जाए पहुचा। रविदास जपै राम नामा, मोहे जमस्यो नाही कामा। राग सोरठ बाणी भगत पेखन की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नैनो

ऐसी वड़ियाई पुत्र कलत्र विच गत पाई ऐसी सेवक सेवा करै जिसका जियो तिसे आगै धरै साहिब पावै सो प्रवान सो सेवक दरगै पावै मान सतगुर की मूर्त हृदय वसाए जो इच्छा सोई फल पाए साचा साहेब कृपा करै सो सेवक जमते कैसा डरै भणत नानक करे विचार साची बाणी स्यों तरे प्यार तां को पावै मुख द्वार जप तप सब एहो शब्द है सार तनासरी महला पहला जियो तपत है बारो बार तप तप खपै बहुत बेकार जय तन